0: कम्युनिटी रेडियो बेंसिगर 107.8 प्रस्तुत करते हैं
1: दिल की आवाज,
0: दिलों से दिल तक। तेरे दिल की आवाज का सीधा प्रसारण अब से हर रविवार सुबह 10:30 से लेकर 11:30 तक होगा और आपके साथ होगी आपकी शायरी जर्निया। देर किस बात की, अपना फोन उठाइए और हमें डायल कीजिए। डायल करने के लिए हमारा नंबर
1: 0474-293-1111।
0: नंबर एक बार फिर से 0474-293-1111।

0: नमस्कार, दिल की आवाज़ सुनने वाले सभी श्रोताओं को शायरी के सलाम, नमस्कार और आदाब। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, ये हमारा सीधा प्रसारण है, तो जल्दी जल्दी फ़ोन कीजिएगा। हाँ जी, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0474293111। नंबर एक बार फिर से 0474293111। और यहाँ पे हम यानी शायनी जर्मियास बैठी हैं आपसे बहुत सारी खट्टी मीठी बातें करने के लिए। हाँ जी, और वहाँ पे गाने लगा कर देने के लिए आज फिलोमिना मेरे साथ हैं। तो ये प्रोग्राम की शुरुआत एक प्यारे से, एक खूबसूरत विचार के साथ करते हैं। जिंदगी की सबसे खूबसूरत आवाज़ वह होती है जो किसी टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद जगा दे। अगर आपकी बात किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है तो उसे कहने में कभी देर मत कीजिएगा। जी हाँ, तो हमेशा अपनी प्यारी प्यारी बातों से सभी का दिल जीतने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मुस्कुराइए, दिल खोलिए और स्वागत कीजिए एक खूबसूरत कॉलर का। शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत।
1: नमस्ते शायनी मैडम।
0: नमस्ते जी, कृष्ण मुंडकिल। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो?
1: हाँ ठीक है,
0: और सुनाओ?
1: हाँ, ये बारिश थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा गर्म हो गया।
0: अच्छा जी,
1: डांस कर रहे
0: हैं। अच्छा, कौन सा गाना चाहिए?
1: हमको दास यशवंत का एक गाना चाहिए, दो लाइन गाएगा।
0: अरे बिंदास, शुरू करो।
1: थैंक यू। माना गो तुम भी

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत। शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: हेलो जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, कैसे हो?
1: ठीक है।
0: और सुनाओ।
1: हमारा नाम है संगम।
0: जी जी, नमस्ते।
1: अभी सुबह से अच्छा मौसम है।
0: हाँ, आज थोड़ा बारिश कम है। राइट।
1: धूप है।
0: जी जी जी जी।
1: और हवाएं मस्त है।
0: जी। और सुनाओ सर, कौन सा गाना चाहिए?
1: नृत्य प्यार कर दी है हमको सनम।
0: हाँ, आप गाओगे?
1: आज सुर बराबर नहीं है। अब तक मैं गाएगा
0: पक्का। ओके, आपके गाने का इंतजार जरूर रहेगा। तो आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया। बुलाते रहे।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, किसी ने बहुत खूबसूरत बात की है, मुस्कान की कीमत नहीं होती लेकिन उसका असर अनमोल होता है। आपकी एक सच्ची मुस्कान किसी के पूरे दिन की रोशनी कर सकती है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि आपका मुस्कान शायद किसी की उम्मीद बन जाए। शायद एक प्यारा सा कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: हेलो,
0: नमस्ते जी, ये कौन बोल रहा है?
1: मेरा नाम कृष्णेंदु।
0: नमस्ते, कैसे हो?
1: ठीक हो?
0: और हम ठीक। आप बताओ और सुनाओ, कौन सा गाना चाहिए?
1: मैं तानिश्रा मुजावा के आलिया भट्ट का सॉन्ग।
0: आप गाओगे?
1: मैं तानिश्रा मुजावा के न तेरे लिए लगता है।
0: ओके डियर, तो आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा देंगे और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया। बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, रिश्ते कभी शब्दों से नहीं, एहसास से निपते हैं। जहां मैं की जगह हम आ जाए, वहीं से प्यार और अपनापन शुरू होता है। छोटी छोटी नाराजगियों को बड़ा मत बनने देना। हाँ, हमारे क्या बोलते हैं ना, दोस्ती में हो या घर में हो, छोटी छोटी बातों को रबर बैंड की तरह खींच कर बड़ा विषय न बनाते हुए, ऑन द स्पॉट अगर छोटी सी बात है, अगर छोटी सी नाराज़गी है, ऑन द स्पॉट ही अगर उसको ठीक किया जाए तो वो रबर बैंड की तरह खींच खींच के रिश्ते टूट नहीं जाते। इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि छोटी सी अगर नाराज़गी, ऑन द स्पॉट ही उसे दूर करने की कोशिश ज़रूर करना। हाँ जी, शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत।
1: हेलो सुभाष,
0: नमस्ते, कैसे हो?
1: नमस्ते, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
0: और सुनाओ।
1: आशीष से गलत में से
0: जी,
1: बात कर रहा
0: पता है, पता है।
1: और इधर ही हम तो थोड़ा सपोलिंग का थोड़ा आदमी आया, वो काशी विश्वास से आया।
0: अच्छा, ओके ओके ओके।
1: उनके लिए एक हम शिव का शिव एक गाना लगाने का।
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: कोई भी।
0: ओके जी, तो आपके लिए प्यार सा गाना हम जरूर लगा देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

दोस्तों, आज का ये सफर मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जिंदगी खूबसूरत तब नहीं बनती जब सब कुछ हमारे मन का हो, बल्कि तब बनती है जब हम हर हाल में मुस्कुराना सीख लेते हैं। इसी उम्मीद और इसी मुस्कान के साथ आपकी शाइनी जर्मियास आपसे इजाजत लेती है। अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने दिल की आवाज़ हमेशा सुनते रहिए। और इस प्यार से विचार के साथ आपकी शाइनी जर्मियास लेती हैं आपसे विदा। अगले हफ्ते मिलने तक नमस्कार।

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।